0: में होता है
1: तो ऐसा बोलो ना।
0: वैक्यूम इवेपोरेटेड निरमा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान, ये हुई ना बात।
2: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम इवेपोरेटेड निरमा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके साथ।